0: उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं।
1: قال فخرج منها فإنك رجيم।
0: खुदा ने फरमाया, यहां से निकल जा, तू मर्दूद है।
1: وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ।
0: और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी।
1: قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ।
0: उसने कहा कि परवरदिगार, मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे।
1: قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ।
0: फरमाया कि तुझे मोहलत दी जाती है।
1: إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ।
0: वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक।

0: उसके सात दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से जमातें तकसीम कर दी गई हैं।
1: इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून,
0: जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे।
1: उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन,
0: उनसे कहा जाएगा कि इनमें सलामती और खातिर जमा से दाखिल हो जाओ।

0: और हमने उस शहर को उलट कर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पत्थरियां बरसाई।
1: इन फी ذلك لآيات للمتوسمين,
0: बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है।
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ,
0: और वो शहर अब तक सीधे रास्ते पर मौजूद है।
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ,
0: बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है।
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ,
0: और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे।
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ,
0: तो हमने उनसे भी बदला लिया और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं।
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ,
0: और वादिये हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की।
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ,
0: हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे।
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ,
0: और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन व इत्मीनान से रहेंगे।
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ,
0: तो चीख ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा।
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ,
0: और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए।
1: وَمَا

इसी पानी से वो तुम्हारे लिए खेती और जैतून और खजूर और अंगूर और बेशुमार दरख्त उगाता है और हर तरह के फल पैदा करता है। गौर करने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बड़ी निशानी है।

और उसी ने तुम्हारे लिए रात और दिन और सूरज और चांद को काम में लगाया, और उसी के हुक्म से सितारे भी काम में लगे हुए हैं। समझने वालों के लिए इसमें कुदरत खुदा की बहुत सी निशानियां हैं।

और खजूर और अंगूर के मेवों से भी तुम पीने की चीजें तैयार करते हो कि उनसे शराब बनाते हो और उम्दा रिस्क खाते हो। जो लोग समझ रखते हैं उनके लिए इन चीजों में कुदरत खुदा की निशानी है।

और खुदा ही ने तुम्हारे लिए घरों को रहने की जगह बनाया, और उसी ने चौपायों की खालों से तुम्हारे लिए डेरे बनाए, जिनको तुम सुबुक देखकर सफर और हजर में काम में लाते हो, और उनकी ऊन और पशम और बालों से तुम असबाब और बरतने की चीजें बनाते हो जो मुद्दत तक काम देती हैं।

0: फिर जिन लोगों ने ईज़ाएं उठाने के बाद तर्क वतन किया, फिर जिहाद किए और साबित कदम रहे, तुम्हारा परवरदिगार उनको बेशक इन आजमाइशों के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है।
1: यौम

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: एक नई पहचान, एक नई लगन।
3: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
4: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
3: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
4: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
3: जब मिलती है लगन,
4: मेहनत,
3: कामयाबी और खुलूस,
4: तो बनती है
3: UCP की दुनिया।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
3: सुनते रहिए।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, FM 92.6 पे आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला अब फिर जारी हो रहा है दोबारा वक्फे के बाद। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट UCP में यहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब, आपने जो थीम बनाई है कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जो है वो जो जहनी सेहत है और उसका इंसानी वक़ार के साथ ताल्लुक़ है, मेंटल हेल्थ और उसका ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो रिलेशनशिप है, जरा थोड़ा सा इसको एक लेमैन के लिए, एक आम शख्स के लिए जरा बयान कीजिएगा ताकि वो समझ सके कि ये क्या है चीज, ये ज़हनी सेहत और इंसानी वक़ार, उसको जरा थोड़ा सा ये चीज़ें रिलेट करने में दुश्वारी होती है, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ज़हनी सेहत को जब हम इंसानी वक़ार या हम डिग्निटी के साथ रिलेट करते हैं तो इंसान की जो वकार है, मेरा ख्याल है वो दुनिया में बड़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। हमारा जो वजूद है उसके लिए हमारे वकार की बहुत अहमियत है। हमें लोग कैसे देखते हैं, हमें लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा रवैया रखते हैं, ये बड़ा इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इंसानों का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक छोटे बच्चे से ले कर एक बुजुर्ग इंसान जो है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे फेजेस हैं जिसमें हम एक बिल्कुल जो छोटा बच्चा है जो 5 साल तक की उम्र का है, फिर एक 12 साल तक की उम्र का है, फिर एक टीनेजर है जो 18 साल की उम्र का है, फिर उसके बाद एक 25 से 30 साल 35 साल का एक एडल्ट है, फिर मिडल एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है। हर उम्र की अपनी इज्जत की तौकीर की रिक्वायरमेंट्स होती है,
1: प्रोटोकॉल है
2: और डेवलपमेंट का हिस्सा भी है
1: जी।
2: क्योंकि यही जो इज्जत है, यही जो तौकीर है, यही जो डिग्निटी है, ये हमारे सेल्फ को डेवलप करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमें माहौल भी बताता है और हम खुद भी उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। और वक्तन फवक्तन जो फीडबैक हमें लोगों की तरफ से मिल रहा होता है वो या तो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को बढ़ाता चला जाता है या फिर वो हमारे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करता चला जाता है। जैसे
1: लामिक बाल ने इसको कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यानी सेल्फ एस्टीम में अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि अल्लाह ताला भी आपको पसंद करे,
2: पसंद करे। और सेल्फ एस्टीम डेवलप करने वाले लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे वो अफराद हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारी कम्युनिटी है ओवरऑल, ये सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ह्यूमन डिग्निटी की तरफ कि वो किस तरह से इंसानों को ट्रीट करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इंसानों को हम किस तरह से सोचते हैं कि इंसानियत की, हम कहते हैं कि इंसानियत की मेराज ही यही है कि हम इंसानों के हकूक भी पूरे करें और इंसानों को अच्छे तरीके से डील करें।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ बहुत जा रही है यूथ
1: जी।
2: बहुत अलग थलग होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो कनेक्शंस थे, अटैचमेंट्स थी जिससे हम वो डिग्निटी फील करते थे
1: और डिसअपीयर हो रही है,
2: वो डिसअपीयर हो रही है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त
1: जैसे तौर पे कमजोर लोग हैं, तबकात हैं,
2: अब इसमें बहुत सारे तबकात आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम जब डिग्निटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं और उसमें जो कम्युनिटी हम डील करते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है। अब क्या उनको डिग्निफाइड वे में मुआशरा ट्रीट कर रहा है? क्या ये एक फैक्टर नहीं है कि हम अगर किसी के घर के अंदर कोई ज़हनी मरीज हो तो वहाँ जाना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना, क्या ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते कि हम इस फैमिली के साथ अपना ताल्लुक रखें या ना रखें? फिर जहाँ पे उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या फैमिलीज उन पे इन्वेस्ट करने पे तैयार हैं कि दे हैव देयर राइट टू बी ट्रीटेड, जैसे बाकी ज़हनी अमराज के अलावा बीमारियाँ हैं उनके इलाज कराया जाता है, तो डिग्निफाइड वे में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं करवाया जाता ट्रीट, उसको क्यों छुपाया जाता है? और फिर तीसरा, जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें इतने कम लोग हैं हमारे पास इस वक्त कि ऑल ओवर द कंट्री अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो वो इतनी मिनिमल हैं कि वो हर पर्सन की एक्सेस टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो डिग्निटी और फिर ट्रीटमेंट मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई एथिक्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग अपनी जहनी तौर पे अपनी रियलिटी को तो पहचान नहीं पा रहे होते
1: जी।
2: उन्हें तो एहसास ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके जहनी मसाइल होते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल या हम जिनको डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है। तो आपने कुछ वाकयात सुने होंगे कि जिसमें दूसरा कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो वहाँ पे एम्प्लॉई है वो उनको मिसट्रीट कर रहा है, उनको मार रहा है, और साथ वो एक जुमला इस्तेमाल करता है जिसने मेरे दिल पे तो बहुत असर किया, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट किया होगा, कि तुम तो सुन और बोल नहीं सकते, आप अपने बाप को जाके क्या बताओगे? तो ये जो तकलीफ है, ये जो डिग्निटी हम नहीं दे पा रहे, तो हमें हर लेवल पे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो जो बहुत लोअर लेवल पे भी एक पर्सन इन लोगों के साथ डील कर रहा है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कि पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आनी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो डिग्निटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना चाहते हैं।
3: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैडम ने बात की, जब हम फैमिलीज की भी बात करते हैं ना, खासतौर पर जब हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, तो मेरी कुछ रिसर्चेस भी क्योंकि उस पर हैं, तो हम जब मदर्स से बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया, जो लेवल्स उनमें बहुत ज़्यादा हाई थे, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था, सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन बहुत ज़्यादा थी। और सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन का मतलब ये था कि लोगों ने उनको अपने घर बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि आपका बच्चा तो बहुत शरारतें करता है, वो हमारे घर आता है तो हमारा तो पूरा घर हिल जाता है, तो आई एम सॉरी, हम आपको बुला नहीं सकते, और ये उनको कहा जाता था।
1: बात सुनते तो ये ना कि कह दिया गया है, जब बहुत सारे सुनते ऐसे नहीं, कहा ही नहीं जाता, लेकिन वो एक खामोश सिग्नल होता है, आप समझ जाते हैं, पहला तो आना जाना था और अब कम।
3: तो वो जो सोशल रिजेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो बहुत डीपली उन्होंने महसूस किया और उसको रिपोर्ट भी किया।
1: सही,
3: और वहां पे आप देखें कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हो गई।
1: यकीनन। अच्छा मिस नेमा, आप ये बताइएगा कि इस मेंटल हेल्थ का, ज़हनी सेहत का क्लाइमेट चेंज के साथ, मौसमी तब्दीलियों के साथ कैसे लिंक है? चलेंगे, बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं, ये सोशल आइसोलेशन की बात की, सोशल रिजेक्शन की आपने बात की, और एक शख्स जो है वो बेचारा बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, फिर उसको ये कहा जाए कि भाई तुम कैसे बताओगे वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे वो इशारों से बताया जाए, अगर वो सुन सकता है तो चले, बोल नहीं रहा है तो उसको बताया जाए, तो ये वाकई किसी इंसान की बेबसी का बहुत बड़ा मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, और तकलीफ तो पहुँचाई जा रही है।
2: और इसी को डॉक्टर साहब हम ह्यूमिलेशन
1: जी, बिल्कुल ह्यूमिलेशन, बिल्कुल
2: इसी को हम ह्यूमिलेशन कहते हैं।
1: तो मिस नईमा, आप ये बताइएगा कि अब इसको क्लाइमेट चेंज के साथ आप किस तरीके से जबरदस्ती मिला रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मिला रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, इंतजार नहीं होगी, मुझे लग रहा है जबरदस्ती मिला रहे हैं आप।
3: बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ ही मेरा ख्याल हफ्तों की बात है, स्मॉग आने वाली है लाहौर में
1: जी, बिल्कुल,
3: और हमारी कुछ अगेन रिसर्चेस हैं इसके ऊपर भी, कैसे स्मॉग ने इफेक्ट किया है लोगों की फैमिली लाइफ को,
1: अच्छा।
3: बच्चों को और उनकी मदर्स को और इवन फादर्स को भी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्मॉग है तो यू आर स्टेइंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपकी पूरी रूटीन जो है वो भी इफेक्ट हो रही है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप स्कूल नहीं जा रहे, सो उस दौरान इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि वो जो कुछ आप कह लें जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, इट हैज़ सेड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज़ अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है ना, आपका काम ख़त्म हो रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप घर रह रहे हैं, और वो आपके अंदर एक बिल्डअप एग्रेशन ला रहा है, और वो अग्रेशन फिर ایک ایسی طرح سے نکل رہا ہے جس طرح سے نہیں نکلنا
1: چاہیے. یعنی پہلے اگر آپ آفس میں تھے, ایسے لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں, اب چونکہ وہاں چھٹی ہے اب وہ فرسٹریشن گھر پہ نکل رہی ہے بچوں پہ.
3: اور سے دوسری یہ بھی بات ہے کہ چھٹی ہے, کئی لوگوں کا کام ایسا ہے نا کہ آپ روز جا رہے ہیں, آپ روز کام کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ارننگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ, اینڈ وین یو آر ناٹ گوئنگ ایوری ڈے تو یو آر اسٹیئنگ ہوم, اور وہ آپ کو اور زیادہ فرسٹریٹ کر رہا ہے
1: کہ آپ کما نہیں رہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا.
2: میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی.
1: ڈاکٹر صاحب, ابھی اس ہم گفتگو کو ابھی لیتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو اس بریک کے بعد ہم اس بڑی پروڈکٹیو اور نالجیبل جو ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھیں گے. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی کچھ دیر بعد وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: Assalamu alaikum and welcome back listeners. आप लोग सुन रहे हैं एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में फातिमा अहमद को और हम लोग मौजूद होते हैं ब्रंच शो में और जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं किसी ऐसे इंडिविजुअल या फिर किसी ऐसे बैंड को जिसने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तानी म्यूजिकल इंडस्ट्री को एक बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी जगह उन्होंने बेसिकली पहुंचाया होता है और हम लोग जो हैं उनके वही बात है कि स्पेसिफिकली द आर्टिस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे. आई ऑलवेज बिलीव और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम लोग अपने लेजेंड्स को उस तरह से अप्रिशिएट ही नहीं कर पाते और तब अप्रिशिएट करते हैं जब वो ईदर दे हैव लेफ्ट द इंडस्ट्री और दे हैव लेफ्ट द वर्ल्ड. और आज जो है जिन आर्टिस्ट को हम डिस्कस करें उनका नाम है जिस बैंड को बेसिकली हम डिस्कस करें नाज़िया एंड जुहैब. और जिसमें से मैंने बताया कि आज हम नाज़िया एंड जुहैब जो एक पॉप डुओ जिसको कहा जाता है पाकिस्तानी पॉप डुओ उनको हमने डिस्कस करेंगे. ये बेसिकली कराची से बिलोंगिंग है इन लोगों की. दे वर बॉर्न ओवर देयर और 1980 में ये डुओ जो है फॉर्म हुआ था. ऑब्वियसली बहन भाई थे तो इन्होंने इकट्ठे ही घर में यू नो आप जैमिंग करते रहते हो एंड देन यू डिस्कवर दैट यू बोथ हैव गुड वॉइसेस एंड देन यू हैव द टैलेंट एंड यू गेट अपॉर्चुनिटीज़. तो फिर उस तरह से आप लोग आगे आ जाते हैं. दे आर बेसिकली इन्होंने कलेक्टिवली डिफरेंट नाम भी सोचे थे और इनको हसन्स भी कहा जाता था, द हसन्स भी कहा जाता था और हसन भी कहा जाता था. लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने सेपरेटली भी काम किया है तो इसलिए इनका जो नाम मेनली जो है वो अलग से लिया जाता है. और ये वही बात है कि सिंगिंग सेंसेशन है, पॉप आइकन्स हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में और ना सिर्फ पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बल्कि पूरे साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और इंक्लूडिंग साउथ अमेरिका इनका इतना नाम है. और अभी तक जो है क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग के जो आर्टिस्ट हैं हमें लगता है कि वो सिर्फ हमारे ही हद तक जो हैं दे आर पॉपुलर एंड दे आर हर्ड. लेकिन नाज़िया हसन और जुहैब हसन की बात करें तो इन बहुत मज़े मज़े की इनकी स्टोरीज़ हैं और बहुत मज़े मज़े की इन्फॉर्मेशन है विच आई विल शेयर आहिस्ता आहिस्ता हम जब आगे बात करना शुरू करेंगे इनके बारे में. इनको बेसिकली पायनियर ऑफ पाकिस्तानी पॉप एंड इंडी पॉप सीन्स में बेसिकली इनको पायनियर कहा जाता है जिन्होंने पहला कदम उठाया या फिर उन्होंने दे स्टार्टेड दिस बेसिकली. और दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एशियन पॉप डुओ ऑफ ऑल टाइम. आई थिंक दैट इज़ अ ह्यूज थिंग और बहुत बड़ी बात है कि आपको इतना नाम दिया जाता है. और उसके अलावा दे सेल मोर देन 65 मिलियन एल्बम वर्ल्ड वाइड और मतलब कि हमें लगता है कि काम जो है ना जब ऑब्वियसली व्हेन यू स्टॉप वर्किंग तो आपको लगता है कि आपका काम रुक गया है या फिर आपको उतना नहीं अब देखा जाता या नहीं सुना जाता. लेकिन दैट्स नॉट ट्रू. आई माई सेल्फ नाज़िया हसन को आई लिसन टू हर लॉट एंड आई लव हर एंड आई रियली रिग्रेट द फैक्ट के काफ़ी यंग एज में यू नो शी लेफ्ट द वर्ल्ड और इफ़ शी वुड हैव बीन अलाइव तो पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री तो मुझे लगता है साउथ अमेरिका तक नहीं लाइक द होल वर्ल्ड वुड हैव नोन के पाकिस्तानी पॉप इंडस्ट्री क्या है. इन्होंने बेसिकली अपना जो एक होता है ना वो इनिशियल आपने अपने जो सक्सेस गेन किया होता है वो आपने म्यूज़िक सिंगल जो इनका गाना आया था इनका जो पहला आप जैसा कोई के नाम से उसमें उन्होंने स्टार्ट किया था. और ये साउंड ट्रैक जो था ये 1980 में एक इंडियन फिल्म थी कुर्बानी के नाम से उसमें भी ये गाना यूज़ किया गया था. और ये जो सॉन्ग था इट वाज़ मतलब कि ग्रुप का डेब्यू एल्बम जो थी डिस्को दीवाने उसमें भी ये गाना इंक्लूडेड था 1981 में इनकी जो एल्बम आई थी उसमें. और ये जो एल्बम थी ये इंडियन प्रोड्यूसर ने इसको प्रोड्यूस किया था. तो आई थिंक दैट इज़ देन अगेन अ ह्यूज सक्सेस के आपकी पहली एल्बम ही इंटरनेशनल लेवल पर उसको रिकग्निशन मिल रहा है और आपका पहला गाना ही इंटरनेशनल लेवल पे उसको रिकग्निशन मिल रहा है. और उसके बाद ये एल्बम जो थी और अभी भी इट इज़ द बेस्ट सेलिंग पॉप एल्बम ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, नॉट जस्ट पाकिस्तान बल्कि پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں یہ بیسٹ سیلنگ البم جو ہے ابھی تک اس کے پاس اس کا ریکارڈ ہے. مطلب کہ وہی بات ہے کہ ختم نہیں ہوا, اس کی ریکگنیشن ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اٹس اسٹل گروئنگ اینڈ اٹس گروئنگ. اور اس کے علاوہ لائک ایسا ایسا جو آئیکونک البم تھی, اٹ ہیلپ پاپ میوزک کو ایک شیپ دینا اور پاکستان میں اس کو پروموٹ کرنا کہ ہاؤ اٹ کیم ٹو بینگ اینڈ آل دیٹ. اور پھر اس کے بعد یہ ساؤتھ ایشین البم جو تھی, دے آلسو اٹ مینج ٹو کراس اوور انٹرنیشنلی بائی بیکمنگ ہٹ ان برازیل, رشیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ انڈونیشیا. تو آئی تھنک یہ ہم یہ فیکٹس ہیں, یہ نہیں ہے کہ میں خود سے باتیں بنا کے بول رہی ہوں, یا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ میں مطلب کہ خود جو کانوں سنا والی بات ہوتی ہے, یہ فیکٹس ہیں. یو کین گوگل اٹ اور یو کین سرچ اٹ کہ یہ اتنی بڑی ہٹ تھی کہ صرف پاکستان یا چلو انڈیا یا بارڈرنگ کنٹریز میں نہیں ہے, برازیل, رشیا, ساؤتھ افریقہ اینڈ انڈونیشیا تک میں اس کا اچھا خاصا نام رہا ہے. اور دس ڈو ریلیز دا سیکنڈ البم کال بوم بوم, جس کا آپ بی جی ایم بھی اس وقت سن رہے ہیں. یہ 1982 میں آیا, اور اس کا جو ساؤنڈ ٹریک تھا وہ بالی ووڈ مووی اسٹار جو ہے اس میں بھی فیچر ہوا تھا. اور آئی تھنک جب آپ کسی بینڈ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یو ریئلی نیڈ ٹو کیپ آن لسننگ کا میوزک, کیونکہ جب آپ ان کا گانے ساتھ ساتھ سنتے رہتے ہو نا, تو پھر آپ کو ایکچولی آپ کے فیلز آتے ہیں اور آپ پراپر طریقے سے انجوائے کرتے ہو, اور یو مطلب کہ آپ کو فیلز زیادہ اچھے آ سکتے ہیں میرے خیال سے, کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی وہ کام کرتے ہو نا, تو پھر آپ زیادہ اچھے سے انجوائے کر سکتے ہو. تو اس طرح کرتے ہیں, اب ہم چلتے ہیں میوزیکل بریک کی طرف, اور اس میوزیکل بریک میں پھر ہم نازیہ حسن کی خوبصورت آواز میں خوبصورت سا گانا سنیں گے. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

0: Your voice, your choice. This is University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya. The best campus radio in the country.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नाजिया हसन को और हम लोग बेसिकली एक हफ्ता हम किसी एक्टर को डिस्कस करते हैं या किसी एक्ट्रेस को डिस्कस करते हैं और अगले हफ्ते हम लोग किसी म्यूजिकल आर्टिस्ट को डिस्कस करते हैं. तो लास्ट वीक हमने एक आर्टिस्ट एंड एक्टर को डिस्कस किया था, तो इसलिए इस दफ़ा हम लोग एक बैंड को डिस्कस कर रहे हैं. बैंड नहीं, डुओ कह सकते हैं नाजिया एंड जुहेब का. और हम लोग ने बेसिकली डिस्कस किया कि हाउ दे बिकेम पॉपुलर और हाउ दे हैव गेंड देयर सक्सेस. और इनकी हम ऑब्वियसली इनकी सक्सेस की बात कर रहे थे, तो हम उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में एक MTV फीचर होता है, उसमें उन्होंने अपनी म्यूज़िक वीडियो जो थी उसको भी मतलब कि वहाँ पर भी उन्होंने ऑनर किया था, उसको वहाँ पर भी भेजा था. और नाजिया एंड जुहेब ने फिर अपनी फोर्थ हिट एल्बम हॉट लाइन के नाम से 1987 में उसको रिलीज़ किया और दिस फीचर द डूओज यंगर सिस्टर ज़ारा हसन एज वेल. तो आई थिंक दिस इज़ वेरी नॉर्मल एंड वेरी इजी टू से, लेकिन वही बात है कि जब आपके सक्सेस इज कम्स टू यू नो मैटर वट, और आप किस तरह से उसको अचीव या किस तरह से उसको अपने किस तरह से उसका ख्याल रखते हो, आई एम नॉट रॉन्ग. और इनकी बात करें तो वही बात है कि फैमिली में ही खूबसूरत आवाज़ और फैमिली में ही एक तना लगन टू अचीव समथिंग वो मौजूद थी. और वही बात है कि उनकी जो छोटी बहन, she also worked with them and she has a melodious voice, इसीलिए obviously she became part of the album. और album भी hit album रही थी. और उसके अलावा फिर इन्होंने आगे release किया अपनी last studio album जिसका नाम था Camera in 1992. और this was मतलब कि जुहेब ने ही इसको लिखा और produce किया. तो you know when you do work तो आपको different opportunities मिलते हैं और फिर आप वहाँ से अपने आप को explore कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि आप कितने अच्छे तरीके से या किस तरीके से आप हर चीज़ को utilize करके अपने different talents explore कर सकते हैं. और Zuhaib did that in the right way and I really believe in the fact कि आपको जब कोई platform मिलता है ना तो उसको 100% उसका use करना चाहिए. ये नहीं कि अगर आपको उस platform का 1/4 part मिला है तो आप बस 1/4 part पर ही रह सकते हो. Try to explore yourself, आप इधर उधर जाओ and you know you can explore कि आप ये भी कर सकते हो and that is the best part. और उसके अलावा फिर उसके बाद उन्होंने अपनी 5th स्टूडियो एल्बम रिलीज़ की और ये उन्होंने अनाउंस किया कि इनकी आखिरी एल्बम होगी. ये एल्बम जो थी इस उस लेवल का सक्सेस इसने अचीव नहीं किया था क्योंकि नाजिया जो थी शी एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी एंड यू नो एक वो डाउनफॉल बेसिकली वहाँ से उनका शुरू हो गया था. और वो CD को उस तरह से प्रमोट नहीं कर सके थे और क्योंकि लोगों को बेसिकली लगता है कि यू नो आपने काम कर लिया और आपने उसको बाहर मार्केट में भेज दिया तो मतलब कि अब और कुछ नहीं है. लेकिन प्रमोशन इज़ द बिगेस्ट पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोग्राम यू डू और उसको जितना प्रमोट करोगे उतना ही उसको सक्सेस मिलेगा. और नाजिया जो है शी ऑब्वियसली तबीयत की वजह से वो उसको उतना प्रमोट नहीं कर सके थे अपने CD को, अपने एल्बम को. तो उस एल्बम के रिलीज़ होने के बाद नाजिया ने गाना छोड़ दिया था, अपना सिंगिंग करियर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी हेल्थ पे और अपनी पर्सनल लाइफ पे उन्होंने फोकस करने का सोचा और बल्कि किया भी वही. और जुहेब जो थे उन्होंने अपना ऑब्वियसली अपना करियर परसू किया क्योंकि यू नो लाइफ में बहुत से ऐसे स्टेप्स आते हैं जहाँ पर यू नो लाइफ इज़ टेस्टिंग यू कि अच्छा आप भी रुक जाएंगे या फिर यू विल कीप ऑन वर्किंग एंड जुहेब डिड दैट. जुहेब सेड के यू नो लाइफ विल ब्रिंग चैलेंजेस लेकिन यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग बेसिकली. तो इसलिए जुहेब ने ही कंटिन्यूड टू वर्क एज एन एक्टर एंड एज अ सोलो आर्टिस्ट. और उसके बाद उन्होंने अपनी सोलो डेब्यू एल्बम जो थी किस्मत के नाम से 2006 में रिलीज़ की. और this group ended in the like very early 90s kyunki Nazia ki tabiyat kharab ho gayi thi and later Nazia died on 13th August 2000 aur lung cancer ki wajah se aur at the age of 35 in London and that is that I believe ke bahut bahut sad news thi aur even though people knew ki unki tabiyat kharab hai and people knew ke you know there's no coming back lekin phir bhi jab ye khabar pahunchi to sab ne hi basically bahut sab udaas the and everyone was shocked on the fact ki you know this has really happened aur Zuhaib jo hai unhone bhi apne singing ko chhod diya before making a spectacular comeback in 2015 by his hit song Jana Chehra and Dheere Dheere jo ke different jo studios hain Pakistan ke usme usko release kiya gaya tha aur wohi baat hai ki jab aap kuch der ka break lete ho to you get more time to work and focus on something aur na sirf ye balki jab itna bada loss hota hai aapki life mein aapki family mein aapke bilkul ghar mein to ya phir uske sath jiske sath aapne apna career basically likha ho phir uske sath aisa ho to phir I think it is not only very sad but it is wohi baat hai ki aap शॉक में चले जाते हैं आपको टाइम लगता है टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक और नाजिया एंड जुहेब का बेसिकली यही सीन था कि दे वर बाउंड एंड दे वर टुगेदर और उन्होंने अपने करियर ही कैसे स्टार्ट किया था तो आपको होता है ना कि एक एक टेस्ट होता है उसका कि यू नो यू स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर और इकट्ठे सारा काम किया था एंड यू नो सडनली व्हेन द बाउंड ब्रेक्स तो फिर आपको थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा इशू हो जाता है तो इसलिए आई थिंक कि आपको थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़रूरत होती है बेसिकली आई बिलीव कि आप एक थोड़ा सा ब्रेक लो छोटा सा और अपने आप को रिलैक्स करो तो उसी तरह हम लोगों ने बहुत बातें की हैं तो इसलिए हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और इस म्यूज़िकल क्योंकि हमें फ़ायदा है कि हम म्यूज़िकल ब्रेक्स में जाते हैं तो इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद हम लोग वापस आते हैं स्टे ट्यून्ड

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोग सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया और आप लोगों ने ज्वाइन किया फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. खैर, मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की न्यूज़ ये देना चाह रही हूँ. एक मेरे लिए भी बहुत फ़न फैक्ट था और आप लोगों के लिए भी आई एम श्योर ये फ़न फैक्ट होगा कि नाज़िया एंड जुहैब जो हैं इनके ऊपर एक मूवी बनने वाली है. एक इंडिया में बेसिकली मूवी बनेगी. इनको एक लाइक द पावर सिबलिंग्स इनको कहा जाता है, तो इनको उसमें एक ऑनर के तौर पे उनके ऊपर एक मूवी बनेगी और इनको पायनियर ऑफ पॉप म्यूज़िक जो है पाकिस्तान में कहा जाता है. तो इसलिए बॉलीवुड फिल्म में उनकी हाईलाइट्स दिखाएंगे. ऑब्वियसली वो जो है ना बायोग्राफी टाइप एक मूवी होगी तो वो बनेगी. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी अमेजिंग एंड दैट इज़ वेरी सक्सेसफुल. और फाहद कुरैशी जो है उन्होंने FM 92.6 को शर्फ बख्शा है अपनी प्रेजेंस से. तो अस्सलाम वालेकुम फहद, और यू नो शाउट आउट मेरे शो पे आपको मिल रहा है. यू नो यू आर सो लकी. और उसके अलावा हम नाज़िया हसन की बात कर रहे थे, तो आई थिंक ये बहुत मज़े की बात है और बहुत एप्रिसिएशन की बात है. और एक मेरे खिला मेरे मतलब के ख्याल से कि लास्ट 3 decades में जितना भी इन पे काम हुआ है और जितने भी हिट्स निकले हैं, लेकिन उसके अलावा इस इनके ऊपर एक इनके करियर के ऊपर एक मूवी बनना और कुछ घंटे में उसको कंपाइल करके और उसको एक जिसका एक होता है ना एक सक्सेस स्टोरी बेसिकली उनके बयान करना, बेसिकली वो ऐसी ही स्टोरी उनका बनाने का मकसद है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये कैसा होगा शो और ये कैसा मतलब कि कैसा काम होगा इस पर. आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट. खैर, अब इस तरह करते हैं क्योंकि वही बात है कि मैं हमेशा बार बार तब से यही बोल रही हूँ कि टाइम का पता नहीं चलता और ऐसे टाइम दौड़ जाता है और शो शुरू होता है और फिर ऐसे ही करते करते शो जो है वो ख़त्म हो जाता है और इतनी सारी बातें होती हैं कहने को, वो सारी बातें रह जाती हैं. लेकिन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरी वन. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड.

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
1: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: UCP की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।
4: Let's get stress free. Tune into FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए, ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
3: Number 1 radio station, FM 92.6, UCP ki duniya।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.

0: worry. That's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh hi nahi. Main janda baby tu jandi. Main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: No. 1 रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Hey, this is Fakhar Abbas and you are listening to FM 92.6 UCB ki duniya. UCB ki duniya.
1: Fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCB FM 92.6 UCB ki duniya.
2: एक नया अंदाज,
3: एक नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान.
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से.
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन.
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: UCP की दुनिया.
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6.
2: सुनते रहिए.
4: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे. जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं. जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं. जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं. ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं. इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो. अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय University of Central Punjab.
5: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं. चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं. आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: 92.6 बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक टू FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। दिस इज प्रोग्राम सुर कहानी और मैं हूँ आपका होस्ट हौरव शम्स। हम कॉन्वर्सेशन में हैं सर अनिल वकास के साथ और हम बात कर रहे थे कि हमारे जो ईस्टर्न म्यूजिक है उसमें प्रिकॉशन की एवोल्यूशन कैसे हुई। वकास भाई, मैंने अभी आपसे से पहले पूछा था, एक क्वेश्चन किया था कि जो धा धिन ता तिन जो सारे बोल हैं हमारी मौसीकी के, रादर तबले के जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज क्या मायने रखती है, धा क्या होता है, ता क्या होता है, एंड अगर उससे भी आगे देखा जाए तो हम गतों की बातें करते हैं, तिरकटों की बातें करते हैं, तो तबले की लैंग्वेज जो अपनी है वो भी बहुत फास्ट है। इस लैंग्वेज में है क्या ये चीजें और इनका मायने क्या है?
2: तबले की जो अपनी एक जुबान है ना, हालांकि कोई उसके बहुत ज्यादा बोल नहीं है, मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत कोई इसके 200-300 बोल है या 500। जो हमारे पास जो जिसको हम दाया कहते हैं, छोटा जो होता है मदीन, उसके 5 बोल है,
1: ठीक है,
2: और जो बाया बड़ा होता है उसके 2 बोल है। अब इन 7 बोलों को मिला के हम एक मेलोडी तैयार करते हैं, जैसे कि ता तिन तेट, इधर दे और इधर गे और के 2 बोल है। ये मैंने मदीन के बोल बताए थे, ता तिन तेट और दे, ये 5 बोल इसके हो गए, गे और के का बोल जो बाएं का हो गया। अब इसको मिक्स करके ऐसी ऐसी मतलब वर्डिंग बनती है कि आप सुन के हैरान हो, ये भी होता है, मतलब ये तो सीधे सीधे बोल है ना। अब जब मैं करूंगा कड़ान, तो आपने कहा इसमें तो कड़ान कहीं नजर ही नहीं आया 5 बोलों में, या तगड़ाण धाति ना गढ़ना गधना धाटी धागे ना धाटी धागे ना, मतलब कुछ ऐसे बोल हैं कि वो लगता है कि यार ये तो 5 बोलों या 2 बोलों के साथ साथ में मिलते नहीं है, लेकिन असल में वो ही बोल है, उन्हीं को मिक्स करके साउंड इफेक्ट बनाए जाते हैं,
1: ठीक है,
2: जिससे वो बोल ऐसे लगता है चेंज है। जैसे घे मतलब घे मे वो ही अगे घे गे गे गे गे, मतलब उसको फर्क कर दिया, के, मतलब उसको डिफरेंट तरह से हमने यूज किया। इसी तरह ता तिन और इसका तेट, ता तिन तेट देर, अब जो देर है ना उसको असल में जो देर देर का बोलना उसके लिए यूज करते हैं, वैसे वो कम यूज होता है क्योंकि वो ज्यादा पखावज में बजाया जाता है दे का बोल, क्योंकि वो नीचे से बजता है, जो चीची वाली जो है ना छोटी जो मिडिल फिंगर है या आपकी लिटिल फिंगर है, वो ऐसे हाथ को उठा, क्योंकि ये ऑडियो हम इसमें दिखा तो नहीं सकते लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बताने की,
1: ठीक है,
2: मतलब ये बोल है, इनको मिला के हमें जैसे कोई कायदा बनता है, फिर गत बनती है, गत तोड़ा होता है, फिर उसके अलावा परन होती है, मतलब इसमें फिर कुछ और, मतलब इस तरह की कई चीजें बनती जाती हैं, जितना डीप जाते जाएंगे वो तो बताते जाएंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जैसे रेला होता है, रीला होता है उसका, जैसे धा त्रिकट तक त्रिकट धा त्रिकट तक धा त्रिकट तक त्रिकट, अब जब इसको दून में लेके जाएंगे इस तरह इसको बजाकर, फिर एक होता है उसको कहते हैं रो बनानी, रो, क्योंकि ये चीजें आम बताते नहीं है, तो चलो यार इसको ना ही बताओ इसको क्या पता चलना, हालांकि ये बतानी चाहिए क्योंकि एक जो होता है ना हमारा सोलो तबला, वो सीख के आप सुन सकते हैं। एक तो होता ना आम जैसे गाने पे बज रहा है उसमें धा धा था, आपको समझ आ रहे होते हैं, आप मजा ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने सोलो तबला सुनना है या आपने क्लासिकल तबला सुनना है तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको उसकी
1: नॉलेज
2: होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, कुछ तालों के बारे में पता होना चाहिए, फिर आप

0: tinna, din tinna, मतलब टिटकिट के बोल कुछ इस तरह बजाए जाए, वो लगे कि वो ही ताल, मतलब वो ही चाल भी वही थी, वो ताल भी नजर आता है लेकिन वो बोल सारे टिटकिट में आए, जैसे धर धर धर धर धर धर धर धर, मतलब वो इस तरह हो जाए, धतर धतर धतर धक देना करना, धर धर धर, मतलब वो शक्ल आपको वो नजर आती थी, इसको कहते हैं रो। तो ये बड़े बड़े लोगों ने बजाया हुआ है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन नहीं होती तो इसलिए लोग छुपाते भी हैं, बताते भी नहीं है, जैसे कि क्लासिकल गाना नहीं बताते, इसी तरह क्लासिकल बजाना भी नहीं बताते वो भी इसमें, क्योंकि काफी लोग हैं वो कहते हैं यार छोड़ो पर इसको ना ही आए तो अच्छा है, ताकि मैं ही नजर आऊं आगे। हालांकि ऐसा नहीं, आप एक चीज बताते हैं ना जब, तो आपको 10 चीजें नजर आती हैं।
1: ऐसे ही है।
0: मैंने, क्योंकि मैंने सिखाना शुरू किया, मुझे तब पता चला कि यार सिखाने से ही ज्यादा, मुझे कई चीजों का नहीं पता था, जब मैंने सिखानी शुरू की मुझे समझ आनी, अच्छा मैंने अब इसको बताने, फिर मैंने उस पर रिसर्च करनी शुरू
1: की। अच्छा, वैसे ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जब आप किसी को कुछ समझाना शुरू करते हैं तो उस समझाने के लिए आपको पहले खुद समझना पड़ता है, और उसमें आप खुद बहुत ज्यादा समझ जाते हैं।
0: हाँ बिल्कुल ऐसी है। अब देखे ना, जैसे वो पखावज है उसके बोल थोड़े फर्क है, जैसे दुंग दुंग नाटक धा, अब ये पखावज के ऊपर बजाने वाली चीज है, लेकिन तबले भी बजा लेते हैं उस हाथ कंट्रोल करके, क्योंकि उसमें जरा थोड़ा खुला अंदाज है बाएं का, और दाएं को इस तरह बजाया जाता है उल्टे हाथ से, या क्योंकि ऊपर से किनार नहीं ना जैसे इसकी होती, इसके ता ऐसे ऊपर खुला मारते हैं नीचे वाली उंगली से,
1: ठीक है।
0: तो तबले में फिर क्योंकि उसको ता बनाना होता है,
1: वो हम पहली उंगली
0: उसको हम कहते हैं तिंग तिंग तीन तीन, तो उस बोल थोड़ा सा चेंज हो लेकिन शक्ल वही रहती है। अब जैसे कि आपने गत की बात की, मैं पहले आपको कायदा बताता हूँ, क्योंकि जैसे राग बढ़ता है ना, सारे गमा पा नहीं सा नहीं पमा कर हिसाब करते हैं जब, तो इन्हीं को लेके आप वेरिएशन मुख्तलिफ पलटे बना रहे होते हैं।
1: ऐसे ही है।
0: इसी तरह कायदे में भी मुख्तलिफ पलटे बन रहे होते हैं, जैसे कायदा भी एक फिक्स शक्ल होती है उसकी,
1: ठीक है।
0: जैसे ये भी जिक्र किया, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना ताती तागे ना धा त्रिकट धाती धागे धिन्ना गिन्ना, तीन ताल का कायदा बड़ा मशहूर है,
1: ठीक है।
0: अब इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम कर रहे हैं धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, फिर हमने शुरू वाला बोल देना धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना ताती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे ना धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तिन्ना गिन्ना धा धाती धागे ना धाती धागे तिन्ना पुराने बुजुर्ग तो घंटा घंटा भी बजा लेते थे, खैर अब तो खैर वो एक मिनट भी नहीं सुनते लोग। इसकी मुख्तलिफ आपको पहले तो शुरू में चंद शक्लें याद करनी पड़ती हैं, फिर बाद में जब ये याद हो जाती हैं तो उसके बाद आपको फिलबत इस पे काम करना होता है, कि वो सोचना नहीं, फिर आपने फिर वो उसी बोल को लेके आपने अपने ज़हन से फौरी आमद, इसमें आमद बड़ी जरूरी है, अगर आपको आमद नहीं ना आती तो आप नहीं बजा सकते तबला। उसकी वजह ये है, जैसे वो होता है ना एक कुदरती एक अंदर होती है बात बंदे का, यार ये इसके अंदर कुदरती है, सीखना नहीं पड़ा इसको, इसका गला कितना अच्छा है, कुदरती यार ये गा लेता गाना या कुदरती बजा लेता है। इसी तरह जब आप सीख लेते हैं, अगर आपको आता है तो कुदरत आपको खुद ही वो आपके ज़हन में डालना शुरू कर देती है, आपका ज़हन खुलना शुरू हो जाता है, तो आप उसकी वेरिएशन बनाना शुरू। उसके बाद इसकी हो जाती है तिहाई, क्योंकि हर कायदे के बाद एक तिहाई, पहले बुजुर्ग नहीं बजाते थे, ये तो अब आके ट्रेंड बन गया ना, तिहाई जरूरी है, नहीं तिहाई बजाई तो लो जी इसने तो तिहाई नहीं बजाई, फायदा क्या। पहले बुजुर्ग लोग इतने इतने पलटे बजा के वैसे ही छोड़ देते थे, तिहाई को वो जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन अब क्योंकि वक्त के साथ साथ बदल गया सब कुछ, अब उसकी कायदा मतलब हमने पलटे की, उसके बाद उसकी तिहाई, जैसे धाती धा करना धा त्रिकट धाती धा कितना करना धा आती धाती धा करना धा त्रिकट धाती धा कितना करना धा आती, मतलब इस तरह एक तिहाई छोटी बना ली या इससे बड़ी बना ली, धाती धा करना धा त्रिकट धाती धा कितना करना धा आती धाती धा के धाती धाती धा करना धा त्रिकट धाती, मतलब एक चीज जो तीन दफा रिपीट होती है ना उसको तिहाई कहते हैं, जैसे दादा त्रिकट दादा दिना दादा त्रिकट दादा दिना दादा त्रिकट दादा दिना, ये तीन दफा मैंने इसको पढ़ा ना, अगर इसको मैं तिहाई की तरह बोलूं ना दादा त्रिकट धा दादा त्रिकट धा दादा त्रिकट धा दादा त्रिकट धा, तो ये एक तिहाई बन गई छोटी।
1: तो वो मेरे ख्याल से अब ट्रेडिशंस के साथ और जिस तरह एवोल्यूशन हुआ है बजाने के तरीकों में, तो उसके साथ भी अब फर्क आ गया है।
0: बिल्कुल,
1: ये कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरा दिल तो नहीं चाह रहा कि इसे इधर रोका जाए, लेकिन अभी वक्त आता है एक ब्रेक का, तो हम इसी पॉइंट से वापस अब ब्रेक के बाद आके इसी पॉइंट से वापस अपनी कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। दिस इज FM 92.6 UCP की दुनिया और आप सुन रहे हैं सुर कहानी।

डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है। इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है, लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: सूफी सिंग्स हू दैट विच इज दैट विच वॉज दैट विच विल बी।
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक सामाइन, FM 92.6 पे आपको हम वेलकम करते हैं। हमारे प्रोग्राम का सिलसिला अब फिर जारी हो रहा है दोबारा वक्फे के बाद। तो हमारी जो कॉन्फ्रेंस थी उस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे। डॉक्टर शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट UCP में यहाँ। तो मैं डॉक्टर साहब, आपने जो थीम बनाई है कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने जो है वो जो ज़हनी सेहत है और उसका इंसानी वक़ार के साथ ताल्लुक़ है, मेंटल हेल्थ और उसका ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो रिलेशनशिप है, जरा थोड़ा सा इसको एक लेमैन के लिए, एक आम शख्स के लिए जरा बयान कीजिएगा ताकि वो समझ सके कि ये क्या है चीज़, ये ज़हनी सेहत और इंसानी वक़ार, उसको जरा थोड़ा सा ये चीज़ें रिलेट करने में दुश्वारी होती है, जरा इसकी वजाहत कीजिएगा।
2: जी डॉक्टर साहब, ज़हनी सेहत को जब हम इंसानी वक़ार या हम डिग्निटी के साथ रिलेट करते हैं तो इंसान की जो वकार है, मेरा ख्याल है वो दुनिया में बड़ी इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए। हमारा जो वजूद है उसके लिए हमारे वकार की बहुत अहमियत है। हमें लोग कैसे देखते हैं, हमें लोग कैसे ट्रीट करते हैं, हमारे साथ कैसा रवैया रखते हैं, ये बड़ा इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। और इंसानों का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये एक छोटे बच्चे से लेके एक बुजुर्ग इंसान जो है, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट के सारे फेजेस हैं जिसमें हम एक बिल्कुल जो छोटा बच्चा है जो 5 साल तक की उम्र का है, फिर एक 12 साल तक की उम्र का है, फिर एक टीनेजर है जो 18 साल की उम्र का है, फिर उसके बाद एक 25 से 30 साल 35 साल का एक एडल्ट है, फिर मिडल एडल्टहुड है, फिर ओल्ड एज है। हर उम्र की अपनी इज्जत की तौकीर की रिक्वायरमेंट्स होती
1: है, प्रोटोकॉल है,
2: प्रोटोकॉल है और डेवलपमेंट का हिस्सा भी है
1: जी।
2: क्योंकि यही जो इज्जत है, यही जो तौकीर है, यही जो डिग्निटी है, ये हमारे सेल्फ को डेवलप करती है। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये हमें माहौल भी बताता है और हम खुद भी उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। और वक्तन फवक्तन जो फीडबैक हमें लोगों की तरफ से मिल रहा होता है वो या तो हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ इस्टीम को बढ़ाता चला जाता है या फिर वो हमारे सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस को कम करता चला जाता है।
1: जैसे इकबाल ने इसको कहा है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। यानी सेल्फ इस्टीम में अपने आप को इस तरह से लेके चलें कि अल्लाह ताला भी आपको पसंद करे,
2: पसंद करे। और सेल्फ इस्टीम डेवलप करने वाले लोग जो हमारे इर्द गिर्द हैं वो सारे वो अफराद हैं जो हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, जो हमारे उस्ताद हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे प्रोफेशनल कोलीग्स हैं, जो हमारी लीडरशिप है और जो हमारी कम्युनिटी है ओवरऑल, ये सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ह्यूमन डिग्निटी की तरफ कि वो किस तरह से इंसानों को ट्रीट करते हैं।
1: बिल्कुल ठीक।
2: इंसानों को हम किस तरह से सोचते हैं कि इंसानियत की, हम कहते हैं कि इंसानियत की मेराज ही यही है कि हम इंसानों के हकूक भी पूरे करें और इंसानों को अच्छे तरीके से डील करें।
1: बिल्कुल ठीक।
2: तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आजकल हम देखते हैं कि आइसोलेशन की तरफ बहुत जा रही है यूथ
1: जी।
2: बहुत अलग थलग होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो कनेक्शंस थे, अटैचमेंट्स थी जिससे हम वो डिग्निटी फील करते थे
1: और डिसअपीयर हो रही है,
2: वो डिसअपीयर हो रही है। दूसरा जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, क्योंकि इस वक्त
1: जैसे हम तौर पे कमजोर लोग हैं, तबकात हैं,
2: अब इसमें बहुत सारे तबकात आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अभी हम जब डिग्निटी की बात करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि बहुत सारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं और उसमें जो कम्युनिटी हम डील करते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ है। अब क्या उनको डिग्निफाइड वे में मुआशरा ट्रीट कर रहा है? क्या ये एक फैक्टर नहीं है कि हम अगर किसी के घर के अंदर कोई ज़हनी मरीज हो तो वहाँ जाना, उन लोगों के साथ उठना बैठना, उन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना, क्या ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन नहीं करते कि हम इस फैमिली के साथ अपना ताल्लुक़ रखें या ना रखें? फिर जहाँ पे उन लोगों को ट्रीटमेंट दिया जाता है और क्या फैमिलीज उन पे इन्वेस्ट करने पे तैयार हैं कि दे हैव देयर राइट टू बी ट्रीटेड, जैसे बाकी ज़हनी अमराज के अलावा बीमारियां हैं उनके इलाज कराया जाता है। तो डिग्निफाइड वे में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं करवाया जाता ट्रीट, उसको क्यों छुपाया जाता है? और फिर तीसरा, जो ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसमें इतने कम लोग हैं हमारे पास इस वक्त कि ऑल ओवर द कंट्री अगर हम कैलकुलेशंस देखें तो वो इतनी मिनिमल हैं कि वो हर पर्सन की एक्सेस टू मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो हमारे लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि वो डिग्निटी और फिर ट्रीटमेंट मेथड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई एथिक्स, कोई कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसको फॉलो किया जा रहा है?
1: सही,
2: क्योंकि
1: सही।
2: ये लोग अपनी जहनी तौर पे अपनी रियलिटी को तो पहचान नहीं पा रहे होते
1: जी।
2: उन्हें तो एहसास ही नहीं होता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? जैसे छोटे बच्चे हैं जिनके जहनी मसाइल होते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल, या हम जिनको डिफरेंटली एबल्ड बच्चे कहते हैं, तो उनको तो पता ही नहीं है। तो आपने कुछ वाक्यात सुने होंगे कि जिसमें दूसरा कोई भी एक नॉर्मल इंसान जो वहाँ पे एम्प्लॉई है वो उनको मिसट्रीट कर रहा है, उनको मार रहा है, और साथ वो एक जुमला इस्तेमाल करता है जिसने मेरे दिल पे तो बहुत असर किया, मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों को कैसे इफेक्ट किया होगा, कि तुम तो सुन और बोल नहीं सकते, आप अपने बाप को जाके क्या बताओगे? तो ये जो तकलीफ है, ये जो डिग्निटी हम नहीं दे पा रहे, तो हमें हर लेवल पे ट्रेनिंग करने की जरूरत है। वो जो बहुत लोअर लेवल पे भी एक पर्सन इन लोगों के साथ डील कर रहा है, जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कि पॉलिसी लेवल पे भी चेंजेस आनी चाहिए, ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए, अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो डिग्निटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस कॉन्फ्रेंस में एड्रेस करना चाहते हैं।
1: जी, प्लीज।
3: मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे मैडम ने बात की, जब हम फैमिलीज की भी बात करते हैं ना, खासतौर पर जब हम स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करते हैं, तो मेरी कुछ रिसर्चेस भी क्योंकि उस पर हैं, तो हम जब मदर्स से बात करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द मदर्स जो उन्होंने रिपोर्ट किया, जो लेवल्स उनमें बहुत ज्यादा हाई थे, डिप्रेशन बहुत ज्यादा था, सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन बहुत ज्यादा थी। और सोशल आइसोलेशन और सोशल रिजेक्शन का मतलब ये था कि लोगों ने उनको अपने घर बुलाना छोड़ दिया, क्योंकि आपका बच्चा तो बहुत शरारतें करता है, वो हमारे घर आता है तो हमारा तो पूरा घर हिल जाता है, तो आई एम सॉरी, हम आपको बुला नहीं सकते, और ये उनको कहा जाता था।
1: बात सुनते तो ये ना कि कह दिया गया है, बहुत सारे सुनते ऐसे नहीं, कहा ही नहीं जाता, लेकिन वो एक खामोश सिग्नल होता है, आप समझ जाते हैं, पहला तो आना जाना था और अब कम।
3: तो वो जो सोशल रिजेक्शन वाला एस्पेक्ट है वो बहुत डीपली उन्होंने महसूस किया और उसको रिपोर्ट भी किया।
1: सही,
3: और वहां पे आप देखें कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी डिस्टर्ब हो गई।
1: यकीनन। अच्छा मिस नेमा, आप ये बताइएगा कि इस मेंटल हेल्थ का, ज़हनी सेहत का क्लाइमेट चेंज के साथ, मौसमी तब्दीलियों के साथ कैसे लिंक है? चलिए, ये बाकी चीज़ें तो हमें समझ में आती हैं, ये सोशल आइसोलेशन की बात की, सोशल रिजेक्शन की आपने बात की, और एक शख्स जो है वो बेचारा बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता, और उसके ऊपर तशद्दुद किया जाए, फिर उसको ये कहा जाए कि भी तुम कैसे बताओगे वगैरह वगैरह वगैरह, चाहे वो इशारों से बताया जाए, अगर वो सुन सकता है तो चले, वो बोल नहीं रहा है तो उसको बताया जाए, तो ये वाकई किसी इंसान की बेबसी का बहुत बड़ा मजाक उड़ाने के मुतरातिफ है, और तकलीफ तो पहुँचाई जा रही है।
2: और इसी को डॉक्टर साहब हम ह्यूमिलेशन,
1: जी बिल्कुल ह्यूमिलेशन, बिल्कुल
2: इसी को हम ह्यूमिलेशन कहते
1: हैं। तो मिस नईमा, आप ये बताइएगा कि अब इसको क्लाइमेट चेंज के साथ आप किस तरीके से जबरदस्ती मिला रहे हैं? मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मिला रहे हैं, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं इंतजार नहीं होगी, मुझे लग रहा है जबरदस्ती मिला रहे हैं आप।
3: बिल्कुल सर, मैं आपको कुछ इसको एक्सप्लेन करती हूँ, कुछ ही मेरा ख्याल हफ्तों की बात है, स्मॉग आने वाली है लाहौर में।
1: जी बिल्कुल।
3: और हमारी कुछ अगेन रिसर्चेस हैं इसके ऊपर भी, कैसे स्मॉग ने इफेक्ट किया है लोगों की फैमिली लाइफ को,
1: अच्छा।
3: बच्चों को और उनकी मदर्स को और इवन फादर्स को भी। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्मॉग है तो यू आर स्टेइंग एट होम मोस्ट ऑफ द टाइम, और आपकी पूरी रूटीन जो है वो भी इफेक्ट हो रही है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप स्कूल नहीं जा रहे, सो उस दौरान इट हैज बीन रिपोर्टेड कि वो जो कुछ आप कह लें जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या इवन डोमेस्टिक वायलेंस, इट हैज सेड टू बी इंक्रीज ड्यूरिंग दैट टाइम, विच इज अलार्मिंग फॉर अस, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा है ना, आपका काम ख़त्म हो रहा है, आप काम पे नहीं जा रहे, आप घर रह रहे हैं, और वो आपके अंदर एक बिल्डअप एग्रेशन ला रहा है, और वो एग्रेशन फिर ایک ایسی طرح سے نکل رہا ہے جس طرح سے نہیں نکلنا
1: چاہیے. یعنی پہلے اگر آپ آفس میں تھے, ایسے لوگ جو فرسٹریشن کا شکار ہیں وہ اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں, اب چونکہ وہاں چھٹی ہے اب وہ فرسٹریشن گھر پہ نکل رہی ہے.
3: اور سے دوسری یہ بھی بات ہے کہ چھٹی ہے, کئی لوگوں کا کام ایسا ہے نا کہ آپ روز جا رہے ہیں, آپ روز کام کر رہے ہیں, اینڈ یو آر ارننگ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. And when you are not going every day, تو you are staying home. اور وہ آپ کو اور زیادہ frustrate کر رہا ہے
1: کہ آپ کما نہیں رہے, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا.
2: میں بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی سر.
1: ڈاکٹر صاحب ابھی اس ہم گفتگو کو ابھی لیتے ہیں, ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, تو اس بریک کے بعد ہم اس بڑی پروڈکٹیو اور نالجیبل جو ڈسکشن ہے اس کو جاری رکھیں گے. سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ابھی کچھ دیر بعد وقفے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।
1: Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP, FM 92.6, UCP Ki Duniya.

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

के सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की. ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की. तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6। ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: मट्टी का है बाबा तू, तेरी किस्मत एक सफर।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
2: नई सोच,
0: एक नई पहचान,
3: पहचान,
1: एक नई लगन,
2: नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस और तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: इस हुनर कदा में हम सदाकार बनाते हैं, चलना तो सबको आता है, हम उड़ना सिखाते हैं। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।